0: कि मुझ पर कोई आसान न करना।
1: पिक्चर आने लिए ना,
2: कौन से?
1: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
4: तेरी।
3: अरे
0: मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना।

0: मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना।
1: बॉडीगार्ड 89.1 FM NTN Radio, The Pulse of Guyana।

फिर देख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा, आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रुकेगा, आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: आपने तो कहा था कि
1: ठीक ही तो कहा था, 5-स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। होना है जो वो होगा, होता है जो

0: कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, एक कदे ने कोशिश की वो भी बन जाए घोड़ा। देखो ताल न टूटे हमारी चाल न टूटे, वो देखो ताल न टूटे हमारी चाल न टूटे,
1: देखो ये चाल न टूटे चाल न टूटे, डुम डुम डुम डुम।